दो नए नामत वारे तिहारे हम पर जुलम करे. दिस सॉन्ग फ्रॉम मूवी लॉन्ग लॉन्ग टाइम अगो एंड आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो 1944 मूवी मेरी बहन ऑल्सो नोन एज माई सिस्टर. द नेक्स्ट टू सॉन्ग्स कम फ्रॉम मूवी शाहजहान. द कैस्ट ऑफ शाहजहान ऑल्सो वॉज के एल सहगल, पैदी जयराज बाय द वे पी जयराज, बॉर्न इन माई होम टाउन निज़ाम सदराबाद स्टेट नाउ इन तेलंगाना. रागिनी वॉज द लीड फीमेल एंड सपोर्टेड बाय कंवर नसरीन, मोहम्मद अफजल रिजवी, सुलोचना चटर्जी, रहमान एंड फ्यू अदर्स. दिस मूवी बाय द वे वॉज ऑल्सो अ डेब्यू मूवी फॉर मजरू सुल्तानपुरी एंड वन ऑफ हिज फर्स्ट सॉन्ग्स ही पेंड. आई वॉन्ट टू प्ले दैट द सेकेंड वन ऑफ द टू सॉन्ग्स आई वॉन्ट टू प्ले for you. This movie, by the way, is fictionalized account of an episode during reign of Emperor Shahjahan. It was second highest grossing film of 1946. Majrooh Sultanpuri obviously made his debut with the film, includes the ever popular song on play, the second one, Jab Dil Hi Toot Gaya, favorite of Sehgal's and song he wanted played at his funeral. One more added thing, K.L. Sehgal was addicted to alcohol. He could not sing or act unless properly fortified by alcohol. Naushad Ali, the composer for this movie, Shahjahan, 1946, persuaded him to sing this song, record this song without the help of alcohol. And he did that. And once that was known, by the way, the music director for another movie, Parvana, 1947 movie, the last film of K.L. Sehgal, and third one of his with Suraiya, was the music director was Khurshid Anwar, who also persuaded K.L. Sehgal to record without being intoxicated. He did it. This movie, Parvana, was released a few months after K.L. Sehgal passed away at an early age, I think 40 or something. The two songs I want to play for you from movie Shahjahan are गम दिए मुश्तकिल, कितना नाजुक है दिल ये न जाना, हाय हाय रे जालिम जमाना, पिक्चर एंड के.एल. सहगल, हिज हार्ट इज एकिंग फॉर हिज बिलवड, हिज लव रागिनी हु इज ऑन ऑर्डर सो एम्परर हैज बीन टेकन टू द रॉयल पैलेस एंड सो ऑन सो फोर्थ. एंड द सेकंड वन एवरग्रीन सॉन्ग जब दिल ही टूट गया, राग भैरवी ताल कहवा, जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे जब दिल ही टूट गया. I mean, this the lyrics of this song are great. The second verse of the song is Malum na tha itni mushkil hai meri raahein, aur maa ke bahe aansu hasrat ne bhari aahein, har saathi chhoot gaya, hum ji ke kya karenge. Enjoy the two songs.

जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे, केएल सहगल सिंगिंग फॉर हिमसेल्फ इन मूवी शाहजहां 1946। नौशाद वॉज द कंपोजर, मजरू सुल्तान पर रोड लिरिक्स, शाहजहां वॉज द डेब्यू मूवी फॉर हिम एंड पिक्चराइज्ड ऑन केएल सहगल। हिज हार्ट इज ब्रोकन फॉर हैविंग गिवन अप हिज लव एज शी वॉन्ट्स टू हिम टू फॉरगेट हर टू सेव एम्परर शाहजहां एंड एम्प्रेस मुमताज लाइव्स। The next two songs come from movie Dard, 1947. Dard had a cast of Munawar Sultana and Suraya Jamal Sheikh, major supporting role for her, and Nusrat Kardar, brother of A.R. Kardar, Abdul Rashid Kardar, and they're supported by Shyam, Badri Prasad, Husn Banu, Pratima Devi, etc. Dard is a was or is a Muslim social romantic melodrama involved love triangle in the form of two girls, Munawar Sultana and Suraya Jamal Sheikh, both in love with a doctor played by Nusrat Kardar. Movie released just after India gained independence. Debut for Shakil Badayuni, by the way. His name was Shakil, and of course he was from Badayun in UP, so his name became Shakil Badayuni. He moved from Bombay to Delhi in 1944. To write songs. He met film producer A.R. Kardar and of course the composer Naushad Ali asked him to sum up his poetic skills in one line. Shakil wrote, "Hum dard ka afsana dunya ko suna denge, har dil mein mohabbat ki ek aag laga denge," became a song in the movie Dard. Naushad immediately retained him for Kardar films and so on and so forth. For first major success of Uma Devi, the first song to play is Uma Devi or टुनटुन, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। एंड सेकंड सॉन्ग ऑन टू प्ले फॉर यू इज शमशाद बेगम सॉन्ग पिक्चर इन सुरैया एंड शी सिंगिंग ऑन पियानो विद नुसरत कारदार एंड मुनव्वर सुल्ताना लिसनिंग। ये अफसाना नहीं जालिम मेरे दिल की हकीकत है, ये अफसाना नहीं जालिम मेरे दिल की हकीकत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है। आई होप यू एंजॉय बोथ ऑफ दिस सॉन्ग।

ये अफसाना नहीं जालिम मेरे दिल की हकीकत है. दिस सॉन्ग संग बाय शमशाद बेगम पिक्चर एंड रैया क्वाइट ए रेयरिटी आई वुड से. द नेक्स्ट टू सॉन्ग्स कम फ्रॉम मूवी दो भाई. कामिनी कौशल, दीपक मुखर्जी और द मेन लीड रोल्स सपोर्टेड बाय उल्हास तिवारी, राजन हस्कर, पारो देवी, एस बी नैमपली. सेकेंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 1947. The songs I'm going to play for you by Geeta Dutt, by the S.D. Burman's music, and Raja Mehdi Ali Khan wrote the lyrics, were so popular that S.D. Burman's fame as a music director, as well as Kamini Kaushal, this was her second career movie, her fame as a heroine and Geeta Dutt's fame as a singer shot up in the period 1947 to 1955. Every film starring Kamini Kaushal, except when she was opposite Ashok Kumar. He was part owner of Filmistan, by the way, and Bombay Talkies and so on and so forth. Her name, Kamini Kaushal's name, used to appear first in the credits before leading hero's name appeared. She, Kamini Kaushal, paired opposite Devanand, very first success, Bombay Talkies production, Ziddi, in 1948. I'll be playing a couple of songs from there in a little while. The two songs from Do Bhai, Mera Sundar Sapna Beet Gaya Ye Khatam Kahan, ना मेरा सुंदर सपना बीत गया, मैं प्रेम में सब कुछ हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया, पिक्चर इन कामिनी कौशल. एंड द सेकंड वन इज याद करोगे एक दिन हमको याद करोगे, अगेन पिक्चर इन कामिनी कौशल. आई होप यू लाइक बोथ सॉन्ग्स.

याद करोगे, याद करोगे, एक दिन हमको याद करोगे, फ्रॉम मूवी दो भाई, मेड गीता दत्त वेरी फेमस एंड एज वेल एज कामिनी कौशल ऑफ कोर्स यू नो बिकेम फेमस बिकॉज ऑफ रोल. दिस वाज आई थिंक सेकंड वन ऑफ आवर मूवीज. एंड जस्ट जस्ट टू मेक अ मेंशन, कामिनी कौशल रिटायर्ड काइंड ऑफ इन मिड सिक्सटीज आफ्टर लेट्स से रोल, मदर्स रोल फॉर मनोज कुमार मूवी शहीद. शी वॉज पार्ट ऑफ द ओरिजिनल शहीद वे बैक इन 40s. आई विल बी प्लेइंग ए सॉन्ग फ्रॉम देयर इन जस्ट लिल वाइल. दिलीप कुमार कामिनी कौशल मूवी, बट शी रिटायर्ड एंड लिव्ड रिटायर्ड लाइफ इन मुंबई एंड पैस्ड अवे इन नवंबर 2025 एट द एज ऑफ आई थिंक 97 और समथिंग. द नेक्स्ट सॉन्ग ऑन टू प्ले फॉर यू इज फ्रॉम मूवी जुगनू. मोहम्मद रफ़ी नूर जहाँ, मोहम्मद रफ़ी नूर जहाँ ड्यूएट. दिस मूवी जुगनू हैड अ कैस्ट ऑफ नूर जहाँ एंड दिलीप कुमार सपोर्टेड बाय शशिकला जवालकर सैगल, जिलोबाई, लतिका, नज़ीर काश्मीरी. मोहम्मद रफ़ी हैड ए स्मॉल रोल, कमियो रोल एज ए कॉलेज स्टूडेंट. एंड दिस मेलंकॉलिक येट काइंड ऑफ रोमांटिक सॉन्ग इज पिक्चर इन वेरी सैड नूर जहाँ and equally sad Dilip Kumar in their respective home after Noor Jahan has jilted Dilip Kumar to keep her promise to his mother. The song is Yahan Badla Wafa Ka Bewafai Ke Siwa Kya Hai, Mohabbat Karke Bhi Dekha, Mohabbat Mein Bhi Dhoka Hai. I hope you enjoy the song. Here it is.

याद रखना चांद तारों इस सुहानी रात को फ्रॉम मूवी अनोखा प्यार. नेक्स्ट सॉन्ग कम्स फ्रॉम मूवी आग 1948. शमशाद बेगम इज डूइंग द सिंगिंग. राज कपूर नरगिस फर्स्ट वन ऑफ देयर पेयरिंग एंड ऑल्सो डायरेक्टरल डेब्यू फॉर राज कपूर एंड फर्स्ट फिल्म ऑफ आर के फिल्म. अगेन आई कैन प्रॉब्ली स्पेंड नेक्स्ट 20 मिनट्स टॉकिंग अबाउट द मूवी आग बट आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट. बट दिस सॉन्ग sung by Shamshad Begum. It's pictured Nargis on a film shooting kind of set with Raj Kapoor and Prem Nath watching the performance. Kahe koyal chol machaye re, mohe apna koi yaad aaye re.

पेट्रियाटिक सॉन्ग फ्रॉम मूवी शहीद, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हो. म्यूजिक वाज बाय गुलाम हैदर एंड लिरिक्स वर रिटन बाय राजा मेहदी अली खान. अगेन आई कैन टॉक ऑल बंच अबाउट दिस मूवी बट आई डोंट हैव टाइम टू डू दैट. लेट मी गो अहेड एंड इंट्रोड्यूस द नेक्स्ट सॉन्ग, लास्ट सॉन्ग फॉर द आवर. इट्स फ्रॉम मूवी मेला. अगेन दिलीप कुमार नरगिस दत्त मूवी. नरगिस वॉज बॉर्न बाय द वे Fatima Rashid. They were supported by Jeevan, his

तू कहे अगर जीवन में गीत सुनाता जाऊं, मन बीन बजाता जाऊं। एज आई मेंशन्ड अर्लियर, दिस वाज मेजर सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस, हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म टू डेट, एंड दैट रिकॉर्ड वाज ब्रोकन सेम ईयर बाय राज कपूर्स बरसात। द नेक्स्ट टू सॉन्ग्स कम फ्रॉम मूवी बड़ी बहन, लता मंगेशकर प्रेम लता ड्यूएट फॉर द फर्स्ट वन एंड सुरैया सोलो इन फॉर द सेकेंड वन। हुसन लाल भगत राम वर द कंपोजर, राजेंद्र कृष्ण रोट द लिरिक्स। दिस मूवी हैड सुरैया रहमान, गीता बाली, सुरैया एंड गीता बाली आर सिस्टर, गीता बाली बींग द ओल्डर वन। सुरैया फॉल्स इन लव विद प्राण हु इज़ अ स्कीमर, एंड गीता बाली एल्डर सिस्टर, बड़ी बहन, दैट्स वेयर द नेम ऑफ द मूवी कम्स फ्रॉम, ट्राइज टू प्रोटेक्ट हर फ्रॉम फ्रॉम प्राण। Geeta Bali is in love with Rahman, who is a doctor, and she is a maid servant at their home, and so on and so forth. The first song, Lata Mangeshkar Prem Lata duet, Chup Chup Khade Ho Jarur Koi Baat Hai, Pahli Mulaqaat Hai Ji Pahli Mulaqaat Hai, picture in Suraya and Rahman and a group singing by the roadside to earn money. Setting is Rahman accidentally bumps into her and breaks an utensil she is carrying. He asks his attendant to go buy a replacement. The second one is really a great song. Very happy Suraya singing. Setting is Rahman walks with her to her home and she sings while he is going away. Wo paas rahe ya dur rahe nazron mein samaye rehte hain. Itna to bata de koi hamein kya pyaar isi ko kehte hain. Two verse song, second verse. मिलने की घड़ियाँ छोटी सी और रात जुदाई की लंबी, मिलने की घड़ियाँ छोटी सी और रात जुदाई की लंबी, जब सारी दुनिया सोती है हम तारे गिनते रहते हैं। एंजॉय द टू सॉन्ग्स।